वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रहरा साहब, श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रो पाया, जा सुख थम ना होए। थुकत कर न मैं नाई, जाहो करे न होए। बलहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत न जाए लखिया रहाओ। जात मैं जोत, जोत मैं चाहता, अकाल कला भरपूर रहिया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो, जिन की सो पर पाया। कहो नानक करते किया बाता, जो खिच करना सो कर राहिया। सोदा रागा सा महला पहला, एक ओंकार सतगुर परसा। सो दर तेरा के हा, सो घर के हा,

गावन थुनो साध बिचारे, गावन थुनो जत्ती सत्ती संतो की, गावन थुनो वीर करारे, गावन थुनो पंडित परन रखी सुर चुक चुक वेद नाले, गावन थुनो मोहनिया मन मोहन सुर का मच पियाले,

रते तेरे भगत रसाले होर खेते तू नो गावन से मैं चित न आवन नानकिया बिचारे सोई सोई सरा सच साहिब सचा सची नाई है भी होसी चाय न चासी रचन चिन रचाई रंगी रंगी पाती कर का जिनसी माया जिन उपाई कर का देखे कीता अपना ज्योतिषी वडियाई ज्योतिष भावे सोई करसी फिर हुक्म न करना चाहे सो पत सहो सहा पत साहेब नानक रहन रजाए आसा महला पहला सुन वड्डा आके सब कोए खे वड वड्डा डिटा होए।

की चल वडियाई आक थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलके अक न पाए वड न होवे कट न जाए ना उमरे न होवे सोग देंद रहे न चुखे भोग गुण एहो होर ना ही कोय ना को होआ ना को होए जेवद आप थेवद तेरी तार जिन दिन खाके

खाई, हर खीर तो हमरी रहरास रहाओ। हर जन के वन बाग वडेरे, जिन हर हर सलता हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रकाश। जिन हर हर हर रास नाम न पाया, थे बगहीन जम्पास। जो सतगुर सरन संगत न ही आए, त्रिक जीवे त्रिक जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन दो मस्तक लिखिया लकास। धन धन सत संगत चित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रकाश। राग गुजरी महला पंजवा, खाहे रे मन चितवे उदम, जा हर हर जियो परिया। सैल पत्र में जन उपाए, था कर जक अगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सुतरिया, गुर परसा परम पद पाया, सुखे खसत हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनिता, कोय न किसकी तरिया। सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर, काहे मन पोखरिया। उड़े उड़ अवे से खोसा, तिस बच्चे बछरे चरिया। थिं कवन कलावे कवन चुकावे, मन में सिमरन करिया।

छोटा सो पुरख इकुंखा सतगुर परसा। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा। सब त्यावे सब त्यावे तुझ जी हर सच्चे सिरजनहार। सब जी तुम्हारे जी तुझी आखा तारा। हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारन हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी किया नानक चंद विचारा। तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना। एक ताते एक बेकारे जी सब तेरी छोज विटाना। तू आपे ताता आपे भुगता जी हो तुत बिन अव

जगत बनायो, देव दैत्य चन उपजायो, आद अंत एके अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, शिव कन को शिव कुन सकतीयो, सतरन को बल मो मद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले पुरे की पीर पचानत, चित्ती ते कुंचर असतुल्ला, सब भर कृपा दृष्ट कर फुल्ला, संतन दुख पाए थे दुखी, सुख पाए सदन के सुखी, एक एक की पीर पहचान है, कट कट के पट पट की जान है, जब उत्खर

महामूर्ख च भेद न जानत, महादेव को कहत सरासिव, निरंकार का चीनत नह बिव। आप आपनी बुध है चेती, परनत भिन्न भिन्न तोई तेती। तुमरा लका न जाए पसारा, खेबित सजा प्रतन संसारा। एके रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयोर वका ही पुप्पा। अंचत चेरच सेथ चखीनी, उतबुज कहं बहुरच दीनी। कहो फुल रजाव है बेटा, कहो सिमित पयो संक इखेटा। सगरी श्रेष्ठ काय अचंबव, आद जुगाड़ स्वरूप सियंबव। आवरचा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठ वट उठ पाता, सकल मले चखरो रन गाता। जे अस दुज थव सरनी परे, तिनके दुष्ट तुकत हवे मरे।

वेद का है हम एक न जानियो श्री अस्त पंकर पातु मरी कर मैंने कहो सब तो ही बकानियो दोहरा

सब गवाया, कर शांत सुख मनिया वसिया, जिन ईचा सब पुचाया। सदा कुर्बान कीता गुरवितो, चिस्तियाए वंडियाया। काहे नानक सुनहो संतो, शब्द रोपी यार, साचा नाम मेरा आतारो। वाजे पंच